जिस होए कृपाल सोई बिद बूझै ताकि निर्मल रीत रहाओ। मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट मीत अर भाई पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंत को ना सहाई। मुक्त माल कनक लाल हीरा मनोरंजन की माया हाव हाव करत बिहानी अवद ता मैं संतोख ना पाया।

सच थान सच बैठका सच स्वाओ बनाया सच पूंजी सच वखरो नानक कर पाया मारू महला पंजवा वेद पुकारे।

माया मोह जगत गोपारा गुरमुख बूझे को बिचारा आपे नदर करे सो पाए आपे मेल मलाई है आपे मेले दे वंडियाई गुर प्रसादी कीमत पाई मन मुख बहुत फिरे बिल लादे दूजे पाए खुआई हे हमें माया विच पाई मन मुख

पूले पत गवाई। गुरमुख हुवै सोय नाय राचे, साचे रहया समाई। हे गुर ते ज्ञान नाम रतन पाया, मनसा मार मन महे समाया। आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई। हे सतगुरु सेवे आप गवाए, मिल प्रीतम सब सुख पाए। अंतर प्यार भक्ति राता, सहज मते बन आई। हे दुख निवारण गुरते जाता, आप मिलिया जग जीवन दाता। जसनों

सच्चा साहिब सच्ची नाई, गुर प्रसादे मन वसाई, आपे आए वसिया कट अंतर, तूटी जमकी फासी हे, किस्से भी तै किस्सा लाही, सतगुर सेवी शब्द सालाही, सच्चे शब्द सदा मत उत्तम, अंतर कमल प्रगासी हे, देही काची कागद मिकदार, बूंद पवै बिन सत्य बिन से टहत न लागे बारा, कंचन काया गुरमुख पूजै, सिंतर नाम निवासी हे, सच्चा चौका सूट की कारा, हर नाम पूजन सच अधारा, सच सदा तृप्त पवित्र है पावन, जित कट हर नाम निवासी हे, औतन बलहारी जो साचे लागै, हर गुण गावै अनदिन जागै, साचा सूख सदा तन्यंतर, रसना हर रस रसी हे, हर नाम चेता अवरण पूजा, एको सेवे अवरण दूजा, पूरे गुरु सब सच दिखाया, सच्चे नाम नवासी हे, भ्रम भ्रम जोनी फिर फिर आया, आप भूला जा खसम भुलाया, हर जियो मिले ता गुरमुख पूजै, चिन्ह शब्द अवनासी हे, काम क्रोध भरे हम अपराधी, क्या मोलै बोलै ना हम गुण ना सेवा साधी, डुबदे पाथर मेलो तुम आपे, साच नाम अवनासी हे, ना कोई करे ना करने जोगा, आपे करह करावे सो होएगा, आपे बख्श ले सुख पाए, सद ही नाम नवासी हे, हे तन तरती शब्द बीज अपारा, हर साचे सेती बन जब अपारा, सच तन जमया टूट न आवै, अंतर नाम नवासी हे, हर जियो अवगुण आरे नौ गुण की जय, आपे बख्श ले नाम दी जय, गुरमुख होवे सो पत पाए, इकत नाम नवासी हे, हर तन समझना हर अंतर हर तन समझना होई, गुर प्रसादी पूजै कोई, गुरमुख होवे सो तन पाए, सद ही नाम नवासी हे, अनल वाउ भरम पुलाई, माया मोह सुध न काई, मनमुख अंधै किछु न सूजै, गुरमत नाम प्रगासी हे, मनमुख होमे माया सूतै, अपना करना समालै अंत विगुतै, पर निंदा करे बहु चिंता जालै, दुखै दुख निवासी हे, आपे करते कार कराई, आपै गुरमुख दे बुझाई, नानक नाम रते मन निर्मल, नामे नाम निवासी हे, मारू महला तीजा, एको सेवी सदा तिर साचा, दूजे लागा सब जग गाचा, गुरमती सदा सच सालाही, सचे ही साच पतीजे हे, तेरे गुण बहुते मैं एक न जाता, आपे लाए लाए जग जीवन दाता, आपे बख्शे दे वड़ियाई, गुरमत ए मन पीजे हे, माया लहर शब्द निवारी, ए मन निर्मल होमे मारी, सहजे गुण गावे रंग राता, रसना राम रवीजे हे, मेरी मेरी करत विहानी, मनमुख ना बूजै फिर इयानी, जमकाल घड़ी मोहत निहालै, अंदन आरजा शीजे हे, अंतर लोभ करै नहीं बूजै, सिर ऊपर जमकाल न सूजै, ऐथे कमाना सो अगे आया, अंतकाल क्या कीजे हे, जो सच लागै तिन साची सोए, दूजे लागै मनमुख रोए, दोहां सिरिया का खसम है आपै, आपै गुण मैं पीजे हे, गुर कै शब्द सदा जन सो है, नाम रसायन ए मन मोह है, माया मोह मैल पतंग, ना लागे गुरमति हर नाम पीजे हे, सबना विच वरतै।

टहट हिरी बिन शब्दा चुके नहीं फेरी। साच सला है साच स्वभाव जन गुरमुख को जाता है जिसनो नदर करे सो पाए। साचा शब्द वसे मने आए नानक नाम रते निरंकारी दर साचे साच पछाता है मारू सोले तीजा। आपे करता सब किछ करना आपे करता सब जिस करना जी जंत सब तेरी सरणा आपे गुपत वरत सब अंतर। गुर के शब्द पछाता है हर के परिपंडारा आपे बख्शे शब्द विचारा जो तुत पावे सोई करसै सचे सिमन राता है। आपे हीरा रत अमोलो आपे नदरी तोले तोलो जी जंत सब शरण तुम्हारी कर कृपा आप छता है जिसन नदर होवे तुर तेरी मरे ना जमै चूके फेरी मरे ना जमै चूके फेरी। साचे गुण गावे दिन राती जुग जुग एक जाता है माया मोह सब जगत उपाया ब्रह्मा बिसन देव सुबाया जो तुत पाड़े से नाम लागे ज्ञान मति पछाता है। पाप पुन वरते संसारा हर सो सब दुख पारा गुरम होवे सुस पाए जन गुरमुख ना पछाता है। कीर्तना कोई मिट नहारा गुर कै शब्द है मुख द्वारा पूर्व लिखिया सो फल पाया जिन आप मार पछाता है। माया मोह हर स्यो चितना लागे दूजे पाए कना दुख लाग आगे मन मुख परम पुले पिकतारी अंत काल पछताता है। हर के पाणे हर गुण गाए सब कल्ब काटे दुख सबाए हा निर्मल निर्मल है पानी हर सेते मन राता है।

का एक दाता गुरमुख विरली जाता है। मेरा प्रभ निर्मल अत अपारा आपे मेले गुर शब्द विचार आपे बख्श सच दृढ़ाए मन तन साचे राता है। मन तन मैला विच जूते अपारा गुरमत बूजे कर विचारा हमें मार सदा मन निर्मल रसना सेव सुख दाता ही। गड़काया अंदर बहु हट बाजारा तिस विच नाम है अत अपारा गुर कै शब्द सदा दरसु है हमें मार पछाता ही। रतन अमोलक अगम अपारा कीमत कवन करे विचारा गुर कै शब्द तोल तुलाई अंतर शब्द पछाता ही। सिमरत शास्त्र बहुत विस्तारा माया मोह पसरिया पसारा मूर्ख पढ़े है शब्द न बूझे गुरमुख विरले जाता है। अपे करता करे कराए सच्ची पानी सच दृढ़ाए नानक नाम मिले वड़ियाई जुग जुग एक जाता है। मारू महला तीजा सो सच से विहो सिरजन हारा

अप्पे अगम यथा हि अप्पे सच्चा सचवरताए एक जन सच्चे आपे लाए सचो सेवै साच कमावै नामे सच सभाहि।

इस जन में काला ही। गुरमुख वनज करे पर आप पछाण, एकस बिन को अवर न जाण है।

मेरा प्रभ साचा साध ही साचा सिर शाह पातशाह ही। से भगत सच्चे तेरे मन पाए धर कीर्तन करह गुर शब्द सुहाए साची बाणी अनदन गावे निरतन का नाम विसाहा ही। जिन आपे मेल विछोड़े नाही गुर कै शब्द सदा सलाही सबना सिर तो इको साहिब शब्दे नाम सलाहा ही। बिन सबना तुद न कोई न जानी तुदे आपे कथी अकत कहानी आपे शब्द सदा गुरदाता हर नाम जप संबाहा ही। तू आपे करता सिरजन हारा तेरा लिखिया कोई ना मेटन हारा गुरमुख नाम देवे तू आपे सहजे गणत सहसा गणत।

साची बाणी, साची बाणी शब्द सुहाए, नानक जन गुण गावे नित साचै, गुण गावे गुणी समाहा हे, मारू महला तीजा, निहचले कसदा सच सोई, पूरे गुर ते सोची होई, हरस पीने सदा त्यान गुरमत सीर सुनाहा हे, अंदर रंग सदा सचियारा, गुर के शर नाम प्यारा, नाउ निद नाम वसया काटे अंतर, छोड़िया माया का लाहा हे, रहियत राजे दुर्मत दुई, बिन सतगुर सेवे एक न होई, एक त्याय निस्तास

ओंकार सब सिष्ट उपाई, सब खेल तमाशा तेरी वडियाई, आपे वेख करे सब साचा, आपे भन कढ़ाईंदा।

तिथे हर वसे जसदांत न परावरा आंदिन हर सेवो सच्ची बाणी हरि शब्द मिलाइंदा हर चेत तिन बलिहार जाओ गुर कै शब्द तिन मेल मिलाओ तिन की धूर लाई मुख मस्तक सत्संगत बह गुण गाइंदा हर के गुण गावा जी हर प्रभावा अंतर हर नाम शब्द सुहावा गुरबाणी चौगुंडी सुनिए साचे नाम समाइंदा सो जन साचा जे अंतर पाले गुर कै शब्द हर

मानस जन्म शब्द चित लाया, बिन शब्द है सब अंध अंधेरा, गुरमुख सह बुझाएंदा, एक कित आए जन्म गवाए, मन मुख लागे दूजे पाए, वेला फिर हाथ न आवे, पग खिसकिया पछताएंदा। गुर कै शब्द पवित्र सरीरा, तिस विच वसै सच गुणी गहीरा, सचो सच वेख्या सब थाई, सच सुन मन वसाईंदा। हम मैं गणत गुरु शब्द निवारे, हर जीव हृदय रखो धारे, गुरु कै शब्द सदा सा लाहे, मिल सच है सुख पाईंदा। सोचे तेज से आप चिताए, गुर कै शब्द वसै मन आए, आपे वेख्या आपे बुझे आपे आप समाईंदा। जिन मन विच वथ पाई सोई जाने, गुर कै शब्द आप पछाणे आप पछाणे, सोई जन निर्मल बाणी शब्द सुनाईंदा। एक आया

अगम अगोचर वे परवाहे आपे मेहरवान अगम अथाहे अपड़ कोई ना सकै तिसनो गुर शब्दी में लाया तुदनु सेवै जो तुद पहावै गुर कै शब्द सच समावै अंधन गुण रवै दिन राती रसना हर रस पाया शब्द मरै से मरन सवार है हर कै गुण हृदय और तार है जन्म सफल हर चरनी लागे दूजा पाओ चुकाया हर जियो मेले आप मिलाए गुर कै शब्द आप गवाए अंदन सदा हर भक्ति।

इस जग में मोह है पासारा, मनमुख ज्ञानी अंध अंधारा। तंदे तावत जन्म गवाया, बिना मैं दुख पाया। कर्म होवे ता सतगुर पाए, हों मैं मैल शब्द जलाए। मन निर्मल ज्ञान रतन चानण, अज्ञान अंधेर गवाया।

जप सत संजम जे सच कमावै मन निर्मल जे हर गुण गावै सबिख मैं अमृत प्राप्त होवै हर जियो मेरे पाया जिसनों बजाए सोई बूजे हर गुण गावै अंदर सूजै हो मैं मेरा ठाकर हाए सहजे ही सच पाया बिन करमा होर फिरै कनेरी मर मर जम मैं चूकै ना फेरी बिका राता बिक कमावै सुख न

वीर तुम समर्थ दाते चार पदार्थ देत ना बार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

अष्टपदी सिमरऊ सिमर सिमर सुपावो कल कल स्तनमय मिटावो सिमरऊ जा सुमर एक है नाम जपते अगणत अनेक है हे पुराण सिमर सुधा खेर किने राम नाम एक आखेर किनका एक जिस जीव साव है ताकि मैं मागनी न आवे कांखी एक दर्श तुहारो नानक उन संग मोय उधारो सुख मनि सुख अमृत प्रभु नाम भक्त जनक मन विश्राम रहो प्रभु कै सिमण गर्भ नाम बस है प्रभु कै सिमण दुख जम नस है प्रभु कै सिमण काल पर हर है प्रभु कै सिमण दोष मंटर है प्रभु सिमृत कश विघन न लाग है प्रभु कै सिमण अंधन जाग है प्रभु कै सिमण पौ न व्यापै प्रभु कै सिमण दुख न संतापै प्रभु का सिमण साधक संग सर्वृदान नानक हर रंगो प्रभु का सिमण रिद सिद्ध नौ निद प्रभु का सिमण ज्ञान ध्यान तत् बोध प्रभु का सिमण जपत पूजा प्रभु का सिमण बिरसा दूजा प्रभु का सिमण तीर्थ स्नानी प्रभु का सिमण दरगाह मानी प्रभु का सिमण होय सो भला प्रभु का सिमण सुफल फला से सिमरे जिन आप सिमराए नानक ताक लागो पाए प्रभु का सिमण सब ते ऊंचा प्रभु का सिमण उदरे मूचा प्रभु का सिमण तृष्णा बुझाए प्रभु का सिमण सब के सुजाए प्रभु का सिमण नाई जम त्रासा प्रभु का सिमण पूर्ण आसा प्रभु का सिमण मन की मल जाए अमृत नाम रदमाय समाए प्रभु जी बसा साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु को सिमरन से धनवंते प्रभु को सिमरन से पातवंते प्रभु को सिमरन से जन परवान प्रभु को सिमरन से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरन से बेमोहताजे प्रभु को सिमरन से सर्व के राजे प्रभु को सिमरन से सुखवासी प्रभु को सिमरन सदा अविनाशी तिम सिमरन ते लागे जिने आप दयाला नानक जन की मंगर वाला प्रभु को सिमरन से परे उपकारी प्रभु को सिमरन तन साध बलहारी प्रभु को सिमरन से मुख सुहावे प्रभु को सिमरन तन सुख बिहावे प्रभु को सिमरन तन आत्म जीता प्रभु को सिमरन तन निर्मल रीता प्रभु को सिमरन तन अंध कनेरे प्रभु को सिमरन बसे हार नेरे संत कृपा ते अंधन जाग नानक सिमरन पूरा भाग प्रभु का सिमरन कार्य पूरे प्रभु का सिमरन कवो ना चूरे प्रभु का सिमरन हर गुण बानी प्रभु का सिमरन सह सुमानी प्रभु का सिमरन निचल आसन प्रभु का सिमरन कमल बिगासन प्रभु का सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार सिमरन से जन जिन को प्रभु मया नानक जन शरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग वेद उपाए हर सिमरन पै सिद जति दाते हर सिमरन नी चौंकुंट जाते हर सिमरन तारी सब तरना सिम सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगले आकारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा कर कृपा जिसे आप

मनुहा नाम त्रै संग सहाय जय महा भयान दू समल है तय केवल नाम संग तेरा चले जय मुश्किल हो वाय अत भारी हर को नाम खिनमाए उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तराए हर को नाम कोट पाप पर हर गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत हो सुखिया लाख करोरी बांध न पराए हर का नाम जपत निस्तरा अनक माया रंग तिख न बुझावे हर का नाम जपते आगावे जी मार्गे जाते अकेला तय हर नाम संग हो सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याई है नानक गुरमुख परम गत पाई है छूटत नहीं कोट लाख बाही नाम जब तय पार पुराही अनक बिघन जय आय सिंगार है हर का नाम तत्काल उधार है अनक जोन जन्म में मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हौ मेला मलकमुना धोवे हर का नाम कोट पाप खोवे ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाईए साध कै संग जी मार्ग के गने जाय ना कोसा हर का नाम उहां संग तोसा जी पैंड महंत गुबारा हर का नाम संग उजियारा जाम पंतरा को ना सियानू हर का नाम तनाल पछानू जय महा भयान तप्त बहु काम तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम जहां त्रिखा मन तुझा करख तै नानक हर हर अमृत वरख भक्त जना की बरतन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर का नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात।

हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर का नाम जन को तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत को पर न भंग, हर का नाम जन की वड़ियाई, हर का नाम जन सुभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत काश ना वियोग, जन रता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा, हर हर जन का मालिक जीना, हर तन जन को वाह प्रभु दीना, हर हर जन का ओट स्थानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते, आठ पैर जन हर हर जपै, हर का भक्त प्रगट नहीं छपै, हर की भक्त मोत बो करे, नानक संग संग केते तरे, पार जाते हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर दुख लथा, नाम की महिमा संतर दिवसाय, संत प्रताप दुर्त सब नसा, संत का संग वड पागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे, जान को सलोक, बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल, अष्टपदी, जाप ताप ज्ञान सब त्यान, खट शास्त्र सिमृत वख्यान, जोग व्यास करम त्रम क्रिया, सगल त्याग मनम दे फिरया, अनक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना, शरीर कटाई हो मैं कर राती, वर्त नेम करै बो भांति, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, महा उदास तपीसर थीवै, अग्न माए होमत प्राण, कनक असव है भरपूम दान, न्योली कर्म करै बो आसन, जैन मार्ग संजम आत साधन, नेमक नेम कर शरीर कटावै, तौपी होमै मैल न जावै, हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गात पाहे, मन कामना तीर्थ दे छुटै, गर्भ गुमान ते मन ते गर्भ गुमान न मन ते होटै, सोच करै दिन से रात, मन की मैल न तन ते जात, इस देही को बहु साधना करै, मन ते कबू न बिखिया टरै, जल तो वै बहुते अनीत, शुद्ध कावे काची पीत, मन हर के नाम की मैं मायूच, नानक नाम उदरे पत बहु मूच, बहुत से आणप जम का पौ व्यापै, अनक जतन कर त्रेष न त्रापै, एक अनेक अगन नहीं बुझाए, कोट पाप दरगा नहीं सिजै, छूट सुनाही ऊपर।

नानक बोला सह सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगे साजना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे। जे को अपनी शोभा लो रह सात संग होमे छोरे। जे को जन्म मरण ते डरा साजना की शरणी परे। जिस जन को प्रदर्श प्यासा नानक ताक बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रदान सात संग जाका मिटे अभिमान। आपस को जो जाना नीचा सोहू गनिया साब ते उच्चा। जाका मन हुए सगल किरीना हर हर नाम तन काट काट जीना। माने पने ते बुरा मिटाना पेखा सगल श्रेष्ठ साजना। सुख दुख जन समत्रिष्टे ता नानक पाप पुन नहीं ले पा। निरतन को तन तेरो नाओ निथावे को नाओ तेरा थाओ। निमाने को प्रभ तेरो मान सगल कटा को देवो दान। कर्ण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी। अपनी गत मित जानो आपे अपन संग आप प्रभ राते। तुमरी उस तुम ते होए नानक अवर न जान सकोए। सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरया। सगल उद्यम मैं उद्यम पला हर का नाम जपो जी सदा। सगल बानी मैं अमृत बानी हर को जसुन रसन वखानी। सगल थान त्यो उत्तम थान नानक जे घट वसै हर नाम सलोक। निर्गुनियार इनया सो प्रभ सदा संभाल। जिन किया तिस चीत राखो नानक निभी नाल। अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कम दृष्टानी। जिन तू सासवार शिंगारिया गर्भ अग्न में जिन उबारिया। भार व्यवस्था तुझे प्यारा दूध पर जोबन भोजन सुख सूद। भिरद प्यायु पर साख सैन मुख प्याऊ बैठ कौ दैन। ए निर्गुण गुण कछु न बूझे बख्श ले हो तो नानक सीजै। जे प्रसाद तारी ऊपर सुख बसाए सोत पर आत्मीत बनता संग हसै। जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पाव को मुला। जे प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा। दीने हस्त पाव कर नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग रचना। ऐसे दुख मुड़े अंत ब्यापे नान काले हो प्रभ आपे। आदि अंत जो राखन हार तेसो प्रीत न करा गवार। जाकी सेवा नवनिध पावै तासो मूड़ा मन ही लावै। जो ठाकुर सदा हजूरे ताको अंधा जान तो दूरे। जाकी टैल पावै दरगा मान तिसे बसारा मोद अजान। सदा सदा ए पूलन हार नानक राखन हार उपार। रतन त्याग कौड़ी संग रचै सा छोड़ झूठ संग मचै। जो छटना सो अस्थिर कर माना जो होन सो दूर पराना। छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै। चंदन ले वो तारा थोए गर्द प्रीत भस्म संग होए। अंधकूप में पत विकराल नानक काल्यो प्रभ दयाल। करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करै दिन रात। बाहर पेख अंतर मल माया शब्द सुनाए कछ करै छुपाया। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान यंत्र व्यापै लो स्वान। अंतर अगन बाहर तन स्वा गल पाथर कैसे तरह था। जाके अंतर बसै प्रभ आप नानक तेजन सह समात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावै करगा लो ओढ़ निभावै। कहां बुजार तो बूझा डोरा निष्कैया तो समझा भोरा। कहां भीषण पद गावै गोंगो जतन करै तो पी सुर भंग। कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं होत उहां उस गावन। करतार करना में दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै। संग साई सुहावै ना चीत जो बैराई ता स्यों प्रीत। बलुआ के गृह पीतर बसाए अंधकेल माया रंग रसा। दृढ़ कर मन मन प्रतीत काल आवै मूड़े चीत। भैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार मान लो उतरो। याहू जुक्त बिहाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर कर्म। तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता अम्बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे। कोई न जाना तुमरा अंत उचे ते उचा भगवंत। सगल समगरी तुमरा सूत्र तारी तुम ते हो स्वाग्याकारी।
तुमरी गत में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। सलोक तीन हार प्रभ छोड़ के लगा आन सुए, नानक नसी जई बिन नामा पात जाए। अस्पदी दस वस्तु ले पाचा पावा, एक बस कर मिखोट गुवावा। एक पीना दे दस पीहर ले, तो मूड़ा को कां करे। जिस ठाकुर सो ना ही चारा, ताको कीजे साध नमस्कारा। जाके मन लागा प्रभु मीठा, सर्व सुख ताहु मन बूठा। जिसने अपना हुक्म नाया, सर्व तो नानक तिन पाया। अगंत शाह अपनी दे रास, खात पीत बरता अनंद उलास। अपनी मान कश बौर शाले, अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बौर उसका विश्वास न होवे। जिसकी वस्त से आगा राखा, प्रभु की आगा माना माथा। उससे चौगुन करे निहाल, नानक साहेब सदा दयाल। अनक भात माया के हेत, सर पर होवत जाने अनेत। बिरख की छाया सो रंग लावे, ओ बिन सायो मन पछतावा। जो दिशा सो चालन हार, लटर उतै अंध अंधार। बटाऊ सो जो लावै ने, ताको हाथ न आवै के। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या धन धन कुटुंब सवाया, मिथ्या हो मैं ममता माया। मिथ्या राज उपन तन माल, मिथ्या काम क्रोध बिकराल। मिथ्या रथ हस्ती असो बस्तरा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता। मिथ्या त्रो मोह अभिमान, मिथ्या आप सुपर करत गुमान। अस्थिर भक्त साध की चरण, नानक जब जब जीवे हर के चरण। मिथ्या सुरन पर निंदा सुनै, मिथ्या हस पर दर्व को हिरे। मिथ्या नेत्र पेखत पर त्यार उपाद, मिथ्या रसना भोजन स्वाद। मिथ्या चरण पर विकार को तावै, मिथ्या मन पर लोभ लुभावै। मिथ्या तन ही पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा। बिन बूझे मिथ्या सब पे, सब दे नानक हर हर नाम लय। बिरथी साकत की यार जा, साच बिना कह होवत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवता कह दुर्गंध। बिन सिमरन दिन डैन प्रथा बिहाये, मेघ बिना ज्यो खेती जाए। गोविंद भजन बिन प्रथे सब काम, ज्यो कृपन के निरार्थ दाम। धन धन तेजन जे घट बस्यो हर नाओ, नानक ताकै बल बल जाओ। रहत अवर कछ अवर कुमावत, मन ही प्रीत मुखो गांड लावत। जानन हार प्रभु परवीन, बाहर भेख न काहू पीन। अवर उपदेशाय आप न कराए, आपत जापत जन्म मरै। जिसका यंत्र बसै नंकार, तिसकी सीख तरह संसार। जो तुम भाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण प्राता। करो बेनती पार ब्रह्म सो जाना, अपना किया आपे मन। आपे आप करतन वेरा, किसै दूर जनावत किसै बजावत नेरा। उपाव से आण सगल ते रैत, सब कुछ जाने आत्म की रैत। जिस पावै तसले लड़ लाए, थान तनंतर आसमाए। सो सेवक जिस कृपा करी, नेमख नेमख जाप नानक हरी। सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिन सजाए अहम एवा। नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी जे प्रसाद छत्ती अमृत खाए, तिस ठाकुर को रख मन माए। जे प्रसाद सुगंध तन लावै, तिसको सिमृत परम गत पावै। जे प्रसाद बसे सुख मंदर, तिसे त्याए सदा मने अंदर। जे प्रसाद गृह संग सुख बसना, आठ पैर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याया त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ टंबर हंडावै, तिसे त्याग कात अवर लुभावै। जे प्रसाद सुख से सोई जै, मन आठ पैर ताका जास गावी जै। जे प्रसाद तो सबको माना, मुक्ता को जस रसन मुखाना। जे प्रसाद तुरु रहता धर्म, मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म। प्रभु जी जब दरगाह मान पावे, नानक पद सेती कर जावे। जे प्रसाद यारो कंचन देही, लिव लावो तिस राम सुनेही। जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत, मन सुख पावे हर हर जस कैत। जे प्रसाद तेरे सगल छेदर टाके, मन शरणी पर ठाकुर प्रभु ताके। जे प्रसाद तुझको न पहुंचाए, मन साथ साथ सिमरो प्रभु उच्चे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ देह, नानक ताकी भगत करे। जे प्रसाद आप भूखन पैरी जाए, मन ते सिमरत क्यों आलस की जाए।
जे प्रसाद असो हस्त सवारी मंत प्रभ को कहूं ना बिसारी जे प्रसाद बाग मिलक तना राग प्रोए प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई उठ बैठ सत्य सत्य आई तिसे त्याय जो एक लख इहां उहां नानक तरी रख जे प्रसाद करें पुन बोदान मन आड़ पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार ब्योहारी तिस प्रभ को सा सा चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा नूप जे प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कहै जे प्रसाद सुने करनाद जे प्रसाद तिखि बिसमाद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहचे बसना जे प्रसाद हस्त कर चलै जे प्रसाद संपूर्ण फलै जे प्रसाद परम गत पावै जे प्रसाद सुख सह सुमावै ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तुम प्रकट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो बसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू तास्यो राच जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जाप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गवाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभु सु प्रसन्न बसै मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए सर्व निदान प्रभु तेरी मया आपो कछु न किन्हू लया जी जित लावो।

नानक साध प्रभु बने आई। साधक संग न कबू तावै, साधक संग सदा सुख पावै। साध संग बस गोचर लहै, साधु कै संग अजार सहै। साधक संग बस थान ऊचै, साधु कै संग महल पूंचै। साधक संग दृढ़ सब धर्म, साधक संग केवल पार ब्रह्म। साधक संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान। साधक संग सब कुल उदारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारा। साधु कै संग सोतन पावै, जिस तन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म रह किरे सेवा, साधक संग शोभा सुरदेवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साधक संग सर्व थान गम, नानक साधक संग सफल जनम। साधक संग नहीं कछ काल, दर्शन भेट होत निहाल। साधक संग कलूखत हरै, साधक संग नरक पर हरै। साधक संग इहां उहां सोहिला, साध संग बिशरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावै, साधक संग न बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद वसै, नानक उदरै साध सुन रसै। साधक संग सुनो हर नाउ, साध संग हर के गुण गाउ। साधक संग न मन ते उसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साधक संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घाट घट डीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गात पई हमारी। साधक संग मिटे सब रोग, नानक साध पिटे संजोग। साध की महिमा वेद न जाना, जेता सुने तेता वखियाना। साध की उपमा त्यो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नहीं अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचे ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची।

लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो अस्पदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे चल मैं कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व को सोख।

ज्यों पाव कासै सुभाओ। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागा जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होय प्रकाश, जैसे धारी उपरे आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा, मन अपना है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पये, नानक जिन प्रभ आप परे। ब्रह्म ज्ञानी सगर कीरी नाय, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जोगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म त्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उप्रयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार महा। ब्रह्म ज्ञानी का नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी का होय सुपला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी का नाम परिवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम बोध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख साहि निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी कै होय अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत।

का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ पागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मनमा है, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाना भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अजाकिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखान है, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जान, ब्रह्म ज्ञानी का यंत्र पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सजीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ।

मंडम कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट अवतार, कई जूत कीनो विस्तार, कई बार पसरो पासार, सदा सदा एक एक ओंकार। कई कोट कीने बोपात, प्रपते होए प्रभ माए समात, तक अंत न जाने कोई, आपे आप नानक प्रभ सोई। कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवता तम प्रगास, कई कोट तत् के बेते, सदा निहार हो एको नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवै, अमर पय सद सद ही जीवै। कई कोट नाम गुण गावै, आत्म रस सुख सह समावै, अपने जन को सास सा

होई जब लग जाने मुझ ते कछु होई तब इसको सुख नाही कोई जब जाने मैं किश करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लाग ने चल नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटा गुरु प्रसाद नानक हौं छूटा सहज कटे लक उठतावै तृप्त न आवै माया पाछे पावै न भोग बिख्या के करै न तृप्तावै खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथै सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बिडपागी किसै प्राप्त होए करन करावण आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावण करने हार इसके हाथ का विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो किशकिन सु अपने रंग सबते दूर सबों कै संग बूझै देखे करै बबेक आपै एक आपै अनेक मरै न बिनसै आवै न जाए नानक सदी रहा समाए आप उपदेसै समझै आप आपे रचया सबके साथ आप कीनो अपन विस्तार सब किश उसकाओ करने हार उसते पिन कहो किश होए थान तनंतर इको सोए अपने चलदा आप करने हार कौत करै रंग अपार मन में आप मन अपने माए नानक कीमत कहन ना जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किनै मुखियानी सच सच सच सब कीना कोट मदे किनै बिरलै चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घटघट सुनी सरवण बखाणी

जिस होवै सो प्रसन्न। अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन में राख मन की तू प्रीत्याग तिस्ते परे नाही किसको होय सर्व निरंतर इको सोय। आपे बिना आपे दाना गैर गभीर गहीर सजन पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल बख्शंद सा तेरे की चरनी पाओ नानक मन एन राओ। मनसा पूर्ण सरना जोग जो कृपाया सोई होग हरन परन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर। अनंद रूप मंगल सत जाकै सर्व सोख सुनिए करता कै राज मैं राज योग मैं जोगी तप मैं तपीसर ग्रस्त मैं भोगी। त्याय त्याय भगत सुख पाया नानक तिस पुरख का कने अंत न पाया जाकी लीला कीमत नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत। समत ज्ञान ध्यान जिन दे जनदास नाम त्यावै से ते गुण मैं जाको परमाए जन्म मरै फिर आवै जाए ऊंच नीच तिसकै स्थान जैसा जनावै तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाकै रंग नाना पे करे एक रंग नाना बिद कीनो विस्तार प्रभ अविनाशी एक किंकार नाना चलत करे खिनमाए पूरे ओ पूर्ण सब ठाए। नाना विद कर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कट तिसकै सब तिसके ठाओ जप जप जीवै नानक हरनाओ। नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगास पताल नाम के तारे सगले आकार नाम के तारे पुरी अस पवन नाम कह संग उदरे सुन सरवण। कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान। करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख स माह समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पात सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली। सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई। सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कर दे प्रवेश सत निरत बूझै जय कोई नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत। जिसकी सिर सो करने हार और न बूझ करत विचार करते की मित न जाने की आ नान जो तिस भावै सो वरती आ बिस्मन बिस्म पै बिस्माद जिन बूझै तिसाया स्वाद। प्रभ कै रंग राजन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे हो दाते दुख काटन हार जा कै संग तरै संसार जन का सेवक सोबड़ भागी जन कै संग एक लिव लागी। गुण गोबिंद कीर

संग न चालसते रह तना तू क्या लपटा वै मूर्ख मना सुतमीत कटंबर बनता इनते कहो तुम कौन सनाथा राज रंग माया विस्तार इनते कहो कौन छिटकार हस्ती रथ सवारी झूठा डंप झूठ पासारे जिंदी ए तिस बूझै नाम बेगाना नाम विसार नानक पछताना।

आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गाव नाइया शब्दो ता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किश है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी ना मन वसावे नाम जिन कह मन वसया वाजी शब्द कनेरी कह नान सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाईया कर शांत सुख मनाए वसया जन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटाऊ जिस दिए वडे आईया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारू साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तत कर सुभागा कर सुभागा शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत दवस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तै सुखो तित कर आनंद वाजी आनंद सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावनी महला पंजवा थाल विच तन वस्तु पयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब साधारू जी को खावे जी को पुंचै तिसका होय उधारू हे वस्त जी न जाय नित नित राखुर धारू तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारू श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातु नाही मैनो जो कीतोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मेरा मतोई सतगुर सज्जन मिलिया नानक ना मिले ता जीवा दान मन थी वह हरिया पौड़ी तिथै तू सम्राथ जिथै कोई ना है उतै तेरी राख अग्नि उदर माहे सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड जाए पाओ जल बिख मसगा गुर शब्दी पार पाए इन को लगी पिया सिमर से खाए कल मैं पौन गुण गोविंद गाए सब सहनो कृपाल संभाले साहे साहे बिरता कोई ना जाए जे आवै तो दाए श्लोक महला पंजवा अंतर गुरु आराधना जय वा जप गुरु नाउ नेत्री सतगुरु पेखना श्रवणी सुनना गुरु नाव सतगुरु सेती रते दरगह पाई अठाओ कहु नानक कृपा करे जिसने वादे जग महतम काडियां बिरले के महला पंजवा रखी रखन हार आप बारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन हो आप दयाल मनोना विसारियन साजना के संग भव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माए बेदारियन त साहिब की टेक नानक मन माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए ते साहिब की टेक नानक मन माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतगुरु आयो शरण तुहारी मिलाए सूख नाम हर शोभा चिंता लाही हमारी।

खंड जो दिसै तन जम जा गाती लूटै निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमुख सिमरजत छूटै कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तन जम जा गाती लूटै निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमुख सिमरत जित छूटै संतोह सागर पार उतरियै जे को वचन कमावै संतन का सुगुर प्रसादी तरियै रहाउ कोट तीर्थ मजने शनाना इस कल मह मैल परिजय साथ संग जो हर गुण गावै सो निर्मल कर लीजै वेद देव सिमर सब सास तन पढ़िया मुक्त ना हुई एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई खत्री ब्राह्मण सूद वै सुपदे चौं वरना कौ सांझा गुरमुख नाम जपा उधरै सो कल मैं घाट घट नानक माझा खत्री ब्राह्मण शूद वै सुपदे चौं वरना कौ सांझा गुरमुख नाम जपा उधरै सो कल मैं घट घट नानक माझा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।